0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రలే.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं.
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े. एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है. इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं. श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा. निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा. इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे. किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है. इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है. विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा. युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है. समारोह में नशा मुक्त

0: तीखी शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी हैज सिक्योर्ड 3 major posts इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ड्यू टू इलेक्शंस। एबीवीपीज यश डबास वन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइल रिया चावरी सिक्योर्ड विक्ट्री फॉर सेक्रेटरी एंड लक्ष्य राज सिंह फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी। हाउएवर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दीपांशु शौकीन इमर्ज विक्टोरियस फॉर द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah have congratulated APVP for their success in the DUSU elections. Mr. Singh said this victory is a symbol of the unwavering faith of the youth in the nation-first policy. In his message, Mr. Shah said that this victory reflects the unwavering trust of the youth in ABVP's ideology of nation first and its commitment to student welfare. BJP President Nitin Naveen said this victory reflects the youth's continued faith in positive and constructive student politics rooted in the spirit of nation first. He said it shows their strong resolve to contribute to the vision of a Viksit Bharat. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sport said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. In a statement, Petroleum and Natural Gas Ministry said that domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price, RSP, with applicable subsidies.

0: ఆకాశవాణి సమయం 8 గంటలకు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార ప్రభాత, అనంతరం మార్నింగ్ న్యూస్. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నిచ్చరలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కి సాథ్ మే ఫర్హత్ నాజ్. सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया. 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन. मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया. अब समाचार विस्तार से. सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले. एक रिपोर्ट.
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है. जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी. बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है. सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा. समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा. इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है. ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा. पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी. ये अभियान 4 चरणों का है. एक रिपोर्ट.
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है. ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार. यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी. तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे. राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है. ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है. इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया.
4: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था. 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक

0: बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। जीएसटी दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
1: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
0: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
2: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
0: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
3: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले 2 दिन तक पूर्वी मध्य और उससे

0: लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किउमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू, दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही

0: చిత్రతరంగిణి ఫిలిం గీతాలు మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. సమయం 12 గంటలు. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ముఖేష్ కుమార్. राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं. समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है. सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है. एक रिपोर्ट.
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है. जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी. सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है. मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी. घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते. एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा. उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं. निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है. इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने

0: विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking its connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Minister of Petroleum and Natural Gas has said the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. In Mumbai, 2 people were killed and 4 others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near Ganesh Utsav Mandal in Kala Chowki early this morning. The injured were taken to a nearby hospitals. Of the injured is reported to be a critical condition, while 3 others are reported to be stable. In another incident in the state, 3 people were killed and 1 injured after a BMW car met with an accident on Mumbai's coastal road early this morning. The injured person has been admitted to hospital. Further investigation is underway. Senior journalist Payal Mehta passed away in Mumbai this morning. She was 46. Ms. Mehta, who was visiting the city, experienced sudden uneasiness and was rushed to a hospital where she breathed her last. Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Rajnath Singh and Ashwini Vaishnav have expressed condolence on her demise. Tensions have escalated in West Asia after Yemen's Houthi fighters launched missile and drone attacks targeting Saudi Arabia. Amid heightened regional tensions, the United States has urged its citizens to reconsider travel to

0: आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अक्सर हम छोटी छोटी बातों को भूल जाना सामान्य समझ लेते हैं। कभी किसी का नाम याद न रहना, कोई जरूरी चीज रखकर भूल जाना या कल की हुई बात को याद करने में थोड़ी परेशानी होना हमें मामूली लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूलने की यह आदत कभी कभी अल्जाइमर जैसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। अल्जाइमर केवल याददाश्त को प्रभावित करने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे व्यक्ति को सोचने, समझने, निर्णय लेने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है। सामान्य के साथ व्यक्ति अपने करीबी लोगों, परिचित जगहों और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण यादों को भी भूलने लगता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, उसकी अपनी दुनिया उसके लिए अनजानी और धुंधली होती चली जाती है। श्रोताओं, अल्जाइमर कारण और निवारण इस विषय पर आइए सुनते हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कुमारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर वर्ष 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। श्रोताओं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं, जैसे चाबी कहाँ रखी है या किसी परिचित का नाम। लेकिन जब ये भूलना सिर्फ एक साधारण आदत न रहकर दिमाग की एक गंभीर बीमारी बन जाए तो इसे अल्जाइमर कहते हैं। आज इसी विषय पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर सिंह, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये बीमारी आखिर क्या है और उम्र के बढ़ने के साथ जो सामान्य भूलने की बीमारी होती है उससे ये कैसे अलग है?
2: यह बीमारी दिमाग या मस्तिष्क के तंत्र कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से होती है, जो कि स्वतः एक उम्र होने के बाद उन कोशिकाओं का ह्रास होने लगता है। और जैसे जैसे कोशिकाओं का ह्रास बढ़ता जाता है, मस्तिष्क की सारी प्रक्रियाएं, सिर्फ याददाश्त या हमारे स्मरण शक्ति की बात नहीं है, हमारे समझने की शक्ति, हमारे पहचानने की शक्ति, हमारे सुनने की शक्ति, हर एक शक्तियों का नाश होता है।
1: जी,
2: जो आमतौर पे छोटी छोटी बातें भूल जाना परेशानी वजह बहुत सारी चीज़ें याद

0: नहीं रख पाना, ये बीमारियां आगे बढ़ती नहीं है। जबकि इस बीमारी में छोटी छोटी घटनाओं से कुछ दिनों के अंदर, 6 महीने 1 साल के अंदर, अपना घर का पता भूल जाना, आने जाने वालों से मिलने वालों का नाम भूल जाना जो कि रोज मिलते हैं,
1: जी
0: देर से ऐसी चीजें जब बढ़ने लगती हैं तो इस बीमारी की तरफ ध्यान आकृष्ट होता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार परिवार के लोग शुरुआती बदलावों को उम्र का असर मानकर टाल देते हैं। ऐसे कौन कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन्हें देखकर ही परिवार को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए?
0: रोजमर्रा की जिंदगी में आम भूलने वाली बातों को परिवार हमेशा नजरअंदाज करता है,
1: जी
0: लेकिन अगर यही चीज बार बार हो और एक ही गलती बार बार समझाने पे भी दोहराई जा रही हो, उसमें स्पष्ट रूप से है कि उस व्यक्ति में यह सिर्फ स्मरण शक्ति का भूलने की बीमारी और छोटी मोटी बीमारी नहीं है, उसे मस्तिष्क में एक व्याधि या बीमारी है जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं, उस जैसी बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: जी ये बीमारी किन कारणों से होती है? क्या ये अनुवांशिक है या जीवन शैली भी इसके लिए जिम्मेदार है?
0: इस बीमारी में अनुवांशिक तत्व हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं, और जिनमें अनुवांशिक तत्व हैं उनमें बीमारी 60 की उम्र के पहले ही आ जाती है, तो उन लोगों को पहचानना ज़्यादा आसान होता है। ये ज़्यादातर बीमारी बढ़ती उम्र की वजह से है। भारत की आबादी की संख्या बढ़ गई है, हम लोग आज़ादी के समय 33 करोड़ से आज हम लोग 150 करोड़ की आबादी पहुँच चुके हैं, बट उससे बड़ी बात है कि लोगों की जीवन शैली है वो बदली है, और जिन ज़्यादा लंबे वक्त तक लोग जीवित रह रहे हैं बिकॉज हमारे पास सारे चिकित्सा साधन उपलब्ध हैं।
1: जी
0: अब 80 और 90 वर्ष में जीने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 8 से 10% हो गई है, जो कि 50 साल पहले 1 या 2% थी।
1: जी
0: तो चूंकि ये उम्र की बीमारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इस बीमारी वाले मरीज अब सामने आने लगे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रह रहे हैं।
1: डॉक्टर सिंह, आम लोग अक्सर डिमेंशिया और अल्जाइमर को एक ही समझते हैं। क्या ये दोनों एक ही बीमारी है या इनमें कोई फर्क है?
0: अल्जाइमर्स एक स्पेशल किस्म का डिमेंशिया है, लेकिन डिमेंशिया के कारण बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे रक्त और शिराओं के अवरोध होने से, जिसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, जिन लोगों को बार बार सर में चोट लगती है जैसे बॉक्सर्स को, तो उन लोगों में पगलिस डिमेंशिया होता है, और अनेक जेनेटिक बीमारियां भी हैं जिसमें डिमेंशिया होती हैं। तो डिमेंशिया एक, जिसको हम लोग कहते हैं कि बड़ा वृक्ष है जिसमें बहुत सारे फल हैं, एक फल अल्जाइमर है।
1: जी डॉक्टर, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की नींद बहुत प्रभावित होती है। क्या अनिद्रा या खराब नींद का पैटर्न भी भविष्य में अल्जाइमर के खतरे को बढ़ाता है?
0: निद्रा का सही नहीं होना और अल्प निद्रा होना, यह शोध में पाया गया है कि उनको आगे चल करके अल्जाइमर्स बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बट
1: जी
0: ये सिर्फ निद्रा की कमी सिर्फ अल्जाइमर्स का कारण नहीं है, लेकिन निद्रा का सही नहीं होना अल्जाइमर्स का जन्म दे सकता है।
1: डॉक्टर सिंह, क्या अल्जाइमर का पूरी तरह से इलाज संभव है और समय पर जांच कितनी जरूरी है?
0: अल्जाइमर्स का इलाज और जांच, पहले जांच की जहाँ तक बात है, तो हम लोग एक क्लिनिकल, हमारे पास एक परफॉर्मा रहता है जिसपे प्रश्न पूछ के उनसे हम लोग उनके मानसिक शक्ति की क्षति का अंदाज़ा लगाते हैं। क्लिनिकल स्टैब्लिश हो जाने के बाद उनका स्कैनिंग करके ब्रेन में कितना रक्त शिराएं कम हो गई हैं, ब्रेन कितना सूख गया है, ये देखते हैं।
1: जी
0: और आजकल खून के तत्वों से और कमर के पानी के तत्वों से हम लोग स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की अल्जाइमर्स होने की संभावना कितनी कम है और ज़्यादा है।
1: आम लोग अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करें ताकि भविष्य में अल्जाइमर के खतरे से बचा जा सके?
0: आम जिंदगी में हमको जो बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा भोजन, व्यायाम और निद्रा, ये किसी भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अल्जाइमर से बचने के लिए लोगों से कहा जाता है, न्यूरोलॉजी में या मेडिसिन में ही, कि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करेंगे तो वो चीज़ नष्ट हो जाएगी।
1: जी
0: तो उसी तरह यूज़ इट और लूज़ इट, तो मस्तिष्क का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसमें हानि होना ज़्यादा चांस है। अब रह जाती है बात कि क्या ये सिर्फ यही वजह है अल्जाइमर्स की, तो नहीं, लेकिन जिनको भी स्मरण शक्ति में क्षीणता आ रही है, अगर वो मस्तिष्क का उपयोग करें, जैसे कि चेस जैसे खेल का करना, या न्यूज़पेपर में सुडोकू का, या जो क्रॉसवर्ड आते हैं उनको
1: जी
0: सॉल्व करने से आप अपने दिमाग को ज़्यादा देर तक स्वस्थ रख सकते हैं और अल्जाइमर्स के होने की क्षमता को दूर कर सकते हैं।
1: अपने को
0: अपने
1: एंगेज
0: मस्तिष्क
1: करके रखना है
0: इंगेज
1: अपने को।
0: करके रखना और उसका सही उपयोग करना है,
1: जी।
0: सोचने में नहीं बल्कि काम में।
1: जी डॉक्टर सिंह, अल्जाइमर के मरीज के साथ साथ उनके परिवार और देखभाल करने वालों पर भी बहुत मानसिक दबाव रहता है, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
0: अल्जाइमर्स डिजीज़ में मरीज़ को कुछ याद नहीं रहता और उसे कोई परेशानी नहीं होती है, सारी परेशानी परिवार वालों और उनके देखभाल करने वालों की है।
1: जी
0: इसमें यह ज़रूरी है कि उनके पास सिर्फ अगर पत्नी हो या एक बच्चा हो तो उसके लिए संभव नहीं है कि

0: अगले 5 से 7 साल जितनी उनकी जिंदगी बची हुई है उनके साथ बिताना। तो परिवार के लोग बदल बदल कर सब लोग समय बांट कर अगर उसका देखभाल करें तो उपचार ज्यादा बेहतर होगा। आजकल अल्जाइमर्स जैसे लोगों के लिए संस्थाएं बन गई हैं जहां पर कि अल्जाइमर्स के पेशेंट रहते हैं, परिवार वाले बीच बीच में जाकर मिलते हैं और सारी सुविधाएं, डॉक्टर की सुविधाएं और बाकी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो अगर वैसी जगह का उपयोग कर पाए तो वो घर वालों के लिए भी अच्छा है और मरीज के लिए भी अच्छा है।
1: जी, क्या कोई विशेष खान पान या डाइट प्लान से दिमाग की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए अल्जाइमर की रफ्तार को कम करने में मददगार साबित हो सकता है?
0: ये मस्तिष्क को विकसित करने वाली दवाएं और जितने भी हमारे पुराने आयुर्वेद से या जो फल फूल हम लोग जैसे कहते हैं कि बादाम या अखरोट खाने से बुद्धि बढ़ती है, तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध में इनका कहीं पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखा गया है। अल्जाइमर से बचने के लिए दिमाग को प्रसन्नचित रखना और दिमाग का उपयोग करते रहना, वो
1: जी
0: सबसे ज़रूरी है कि दिमाग का ह्रास नहीं हो।
1: जी
0: अभी जो नई दवा आई है उससे दिमाग के अंदर की बीमारी को बढ़ने से रोका जाता है, लेकिन जितनी बीमारी हो गई है उसको वापस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआती दौर में जांच हो, सही डायग्नोसिस हो और इलाज संभव है, क्योंकि आजकल वो दवाएं बाजार में आ गई हैं,
1: जी
0: हमारे देश में भी उपलब्ध हैं। प्रश्न है सिर्फ उसके मूल्य का।
1: जी
0: अगर शुरुआत में पहले स्टेज में अगर बीमारी पता चल गई और इलाज शुरू हो गया तो बीमारी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।
1: जी डॉक्टर सिंह, हमारे देश में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को लेकर आज भी एक संकोच देखा जा रहा है। अल्जाइमर के मरीजों को समाज में सही माहौल देने के लिए कम्युनिटी स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए?
0: मानसिक रोगों को कम्युनिटी स्तर पे हम देखभाल कर सकते हैं, बट अल्जाइमर्स में चूंकि मरीज अपने आप से पूरी तरह से अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ से अवगत नहीं है, तो उसका आचरण समाज में लोगों को पसंद नहीं आ सकता। तो अगर समाज के लोग समझे कि हाँ ये अल्जाइमर्स का पेशेंट है, इसको नज़रअंदाज करें, लेकिन ये संभव हर वक्त के लिए हर समय नहीं है, तो इनके लिए घर में परिवार के अंदर वैसा संसाधन उपलब्ध कराया जाए और उनको सहायता दी जाए कि लोग उस चीज़ से झूल सकें। बट ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जहाँ संस्था है जहाँ पर अल्जाइमर मरीजों को रखा जाता है, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा आसान होता है उनको मैनेज करना, ना कि घर पे मैनेज करना। वैसे घर पे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन घर वालों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है।
1: जी डॉक्टर सिंह, हमारा अगला सवाल ये होगा कि हमारी आंत और मस्तिष्क के बीच किस तरह का संबंध होता है? गट ब्रेन एक्सिस क्या है? आंत में मौजूद माइक्रोबायोम हमारे मूड, तनाव, याददाश्त और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर सकता है?
0: यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अल्जाइमर्स के विषय पे जितने भी शोध चल रहे थे उसमें सबसे सार्थक शोध गट न्यूरोबायम थ्योरी ही है। गट न्यूरोबायम थ्योरी के अनुसार हमारे आंतों के अंदर विभिन्न प्रकार की जीवाणियों की प्रजातियां रहती हैं, अलग अलग कॉलोनीज रहते हैं, और जब उनका शोध किया जाने लगा तो जिन लोगों को अल्जाइमर्स की बीमारी बाद में उत्पन्न हुई तो उनके जीवाणियों के जो प्रजातियां थीं वो अलग थीं जो लोग नॉर्मल इंसान थे।
1: जी
0: तो ऐसे 4 किस्म की प्रजातियां जिनको साइंटिस्ट ने खोज निकाला है कि अगर ये प्रजातियां आपके पेट में सही हैं तो आपको अल्जाइमर्स होने की संभावना बिल्कुल कम है। आंतों और मस्तिष्क का क्या संबंध है? आंतों को चलाने के लिए वागस नर्व का कंट्रोल ब्रेन से शुरू होता है। ये ब्रेन से सिग्नल आंतों को ले जाते हैं और आंतों में होने वाले जीवाणियों के जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको वापस ले जा करके ब्रेन में लेकर जाते हैं। तो ये दोनों के तरफ एक संवाद चलता रहता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जरिए।
1: जी
0: अल्जाइमर्स की बीमारी में जो प्रोटीन संवाद अंदर जा रहा है दिमाग के अंदर, वो प्रोटीन में फोल्डिंग का एरर होता है। वो प्रोटीन ज़्यादा फोल्ड हो जाते हैं और दिमाग में पहुंचने के बाद वो जो घुल करके अपना सिग्नल उनको ब्रेन को पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाते, बल्कि उस कोशिका के अंदर वो जमा होने लगते हैं, और जैसे जैसे वो जमा होते जाते हैं आसपास के सारे प्रोटीनों को भी मिसफोल्ड करके अनसॉल्युबल बना देते हैं। जब एक बार वागस नर्व के न्यूक्लियस में ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं तो वागस के जितने कनेक्शन ब्रेन से हैं वहां ये सारे प्रोटीन्स पहुंच करके बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स बना देते हैं। ये प्लाक्स जब न्यूरॉन के अंदर जमा होने लगते हैं तो न्यूरॉन टूटने लगते हैं और उसमें न्यूरॉन का क्षति होता है। ये हमारे अल्जाइमर्स का बेसिक हाइपोथेसिस है।
1: जी क्या आंत में होने वाली सूजन और शरीर में बढ़ने वाला क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है?
0: आंतों का सूजन नहीं, शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन, जहां पर भी किसी भी तरह की बीमारी से अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट है तो उसमें दिमाग पे उसका बुरा असर पड़ता है कि इन्फ्लामेशन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं
1: जी
0: जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं, ये साइटोकाइंस जाकर के दिमाग पे विपरीत असर डालते हैं। दिमाग के सोचने समझने की क्षमता दिमाग पे विपरीत असर डालते हैं।
1: जी क्या आंतों में होने वाले बदलाव मस्तिष्क के अल्जाइमर से जुड़े न्यूरोलॉजिकल बदलावों को प्रभावित कर सकते हैं?
0: जो मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में कहा कि गट न्यूरोबायोम थ्योरी का कहना ही यही है।

0: कि
1: जी
0: अगर पेट के अंदर आपके जीवाणुओं की प्रजातियां सही हैं तो आपको अल्जाइमस नहीं होगा। अगर खराब प्रजातियां वहां उत्पन्न हो रही हैं तो वो प्रजातियां आगे चल के ब्रेन को सिग्नल देती हैं वागस के जरिए, और उस जरिए वागस के बाद ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स में वो फैलती हैं,
1: जी
0: तो उससे सीधा अल्जाइमस का रिश्ता देखा जा रहा है।
1: जी डॉक्टर सिंह, आखिरी में मैं ये पूछना चाहूंगी कि भविष्य में अल्जाइमर के उपचार के लिए कौन सी नई थेरेपी या अप्रोचेस सबसे अधिक शोध का विषय है? क्या ऐसे उपचार विकसित हो रहे हैं जहां बीमारी का मूल कारण को टारगेट कर सके?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सारा का सारा शोध आज भविष्य में हम इसको कैसे होने से रोकें इस पर केंद्रित हो चुका है। इस समय मैं अपने पुराने आयुर्वेद या हमारे जो नॉर्मल ज्ञान था,
1: जी
0: जो हम लोग कफ पित्त वाप इस पे जो हम हमारे जो वैद्य इस पे इलाज करते थे, उसमें पेटों की संरचना भोजन पे सारा ध्यान रख करके पेट को साफ रखते थे।
1: जी
0: आजकल के हमारी भोजन व्यवस्था बदल गई है, उसका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमारे गट के जीवाणुओं को मारते रहते हैं और खराब प्रजाति के जीवाणुओं को बढ़ने देते हैं, उसकी वजह भी एक है। अगर शोध हमारा निश्चित रूप से उन जीवाणुओं को पकड़ करके और वापस गट में किसी के डाल करके उसके गट को ठीक करता रहे, जो कि शोध चलना शुरू हो गया है, आप एक नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को पेट में डाल करके उसको वहां स्थापित करें,
1: अच्छा
0: खराब फ्लोरा को हटा करके, तो उससे भविष्य में इसके इलाज का संभावना है कि हम बीमारी को आने से रोक सकते हैं।
1: जी
0: आज के इलाज में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब तक हमें बीमारी का पता चलता है तब तक 10 वर्ष से अधिक अंदर दिमाग में बीमारी हो चुकी होती है, तो उसको पूरी तरह से आज की तारीख में वापस करना संभव नहीं है। नए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो अभी बाजार में आए हैं, प्लाक बनते हैं और टाउ प्रोटीन का जो होता है तो उसको उस प्लाक को तोड़ने में वो सक्षम है, और कुछ दवाओं से तो प्लाक पूरी तरह से हटा दिए जा रहे हैं। उन दवाओं का क्लेम है कि एक बार 1 साल या 1.5 साल का आपने इलाज कर लिया तो आपके दिमाग से प्लाक पूरी तरह निकल जाएंगे और आगे बीमारी बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी।
1: डॉक्टर एम के सिंह जी, आज आपने अल्जाइमर पर बहुत ही सरल और स्पष्ट जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश एक ही देना चाहता हूं कि शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता दोनों चीजें जरूरी हैं अपने जीवन यापन के लिए, और इसके लिए व्यायाम, शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम करते रहें।
1: श्रोताओं, अल्जाइमर केवल स्मृति के कमजोर होने तक सीमित नहीं है। ये रोग व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जागरूकता, समय पर चिकित्सीय परामर्श और परिवार का धैर्य एवं भावनात्मक सहयोग बेहद आवश्यक है। आइए हम सभी मिलकर अल्जाइमर के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों तक उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का भाव रखें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया है। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं फिल्मी संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे किशोर कुमार और फिल्म गोलमाल का गुलजार का लिखा गीत, जिसे संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मन्नाडे और फिल्म आनंद का यज्ञेश का लिखा गीत, जिसे संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। इसी गीत के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले हिंदी कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: ఆకాశవాణి సమయం 1:10 కు వస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ప్రాంతీయ వార్తలు ప్రసారమవుతాయి.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के ख्वातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शिफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस ने अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेस, मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और दीगर शराकत दारों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में 17 मुल्कों के मारूफ जज और अदालती नुमाइंदे भी शरीक हुए। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत के मुताबिक मुल्क में 1067 मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद किया जा रहा है। इसका मकसद नशा मुक्त वादों, दस्तखत करने की मुहिम, नुक्कड़ नाटक, नारे तहरीर करने और नौजवानों की ज़ेर क़यादत मुबाहिसों के जरिए मस्कूरा मुहिम का पैगाम सीधे नौजवानों तक पहुँचाना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशामुक्त पंजाब यात्राओं के तीसरे मरहले का आगाज कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका की सादिकी सरहद से कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने रियासती बीजेपी के सदर केवल सिंह ढिल्लों और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमराह आसफ वाला जंगी मेमोरियल पर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा को सियासी जाविये से नहीं देखा जाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं।

0: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: जनाब मेघवाल ने मुनशियात से मुतासिरा कुछ कुंभों के अरकान से मुलाकात भी की और उनके दुख दर्द को सुना। इससे कबल पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने जुमे के रोज सरहदी जिले पठानकोट से यात्रा का आगाज किया था। इसमें सरहदस्त पंजाब को दरपेश तीन बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इनमें मुनशियात की बढ़ती हुई लानत, अमनो कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी शामिल हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत तेलंगाना में भी कई खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय फिजाइया जोधपुर के फिजाई फौज के स्टेशन पर जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ है दो तरफा फिजाई मशक वीर गार्जियन में हिस्सा ले रही है। ये 14 रोजा मशक मंगल के रोज खत्म हो जाएगी। इसमें दोनों मुल्कों की फिजाई फोर्सेज के दरमियान वसीतर पेशावराना राबतों और कार्रवाई से मुतालिक जदीद तर्ज के मिशन पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसमें भारतीय फिजाइया की तरफ से मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका तैयारे तेजस, SU-30 MKI और राफेल समेत मुख्तलिफ लड़ाका हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं। सीनियर सहाफी पायल मेहता का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 46 साल की थीं। मोहतरमा पायल मेहता मुंबई गई हुई थीं कि अचानक बेचैनी होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव ने उनके इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। मुंबई में आज सुबह सवेरे कला चौकी में गणेश उत्सव मंडल के नज़दीक पीने के पानी के आरजी स्टॉल में करंट लगने से दो अफराद की मौत हो गई, जबकि चार जख्मी हुए। ये वाकया महागणपति उत्सव मंडल में दाखिल होने के रास्ते के नज़दीक दत्ताराम लैंडमार्क पर पेश आया। जख्मियों को नज़दीक के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है, जबकि दीगर तीन की हालत मुस्तहकम है। मगरबी एशिया के खित्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए गए यमन के हौसी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के तनाजुर में अमरीका ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया के खित्ते का सफर करने पर नजरेसानी करें। अमरीका ने महाजाराई के जोर पकड़ने, परवाजों में रुकावट और अमरीकी मफादात को निशाना बनाकर हमलों के ताल्लुक से इंतबाह दिया है। अमरीका के महकमे खारजा ने दुनिया भर में अपने शहरियों को मुस्तैद और चौकस रहने की सलाह दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में आज आसमान पर जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और अगले दो दिन के दौरान मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने इन्फरादी तौर पर चांदी का तमगा जीता है। 2025 की आलमी चैंपियनशिप में उन्होंने कांसे का तमगा हासिल किया था। फाइनल में वलारिवन ने 252.4 पॉइंट हासिल किए और इस तरह वो जापान की हिनाता ताइची के मुकाबले दूसरे मुकाम पर रहीं। ताइची ने 253 पॉइंट के साथ सोने का तमगा हासिल किया। इससे कबल खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में भी भारत ने चांदी का तमगा जीता। इस तरह एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने एशियाई खेलों में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस काबिले सताइश कामयाबी से इन खेलों में भारत के तमगे जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है और मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है। भारत बांग्लादेश को दूसरे सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने बांग्लादेश के सामने 196 रन का निशाना रखा था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिफाली वर्मा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया।

वो एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर T20 मैचों की अपनी पहली सेंचुरी बनाई। हॉकी में आज भारत की ख्वातीन टीम ने पूल बी के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 19 गोल से करारी शिकस्त देकर एशियाई खेलों में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। उज्बेकिस्तान की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में जारी वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे हासिल किए हैं।

0: India storms into the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the women's T20 international. And IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
4: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
2: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
1: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
3: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं, उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
2: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
2: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU

0: MiG-30MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में तीन बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई

0: में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा, शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज, और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం.

0: సైకిల్ ర్యాలీ ద్వారా ఒక అవగాహన కల్పించి మాదక ద్రవ్యాల డ్రగ్స్ కు అడిక్ట్ అవుతున్నటువంటి మన యూత్ విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానోదయం కల్పించాలని.
1: जिले निर्मल में आज दोपहर गरज चमक के साथ बारिश हुई. सोन मंडल के जाफरापुर में नारियल के दरख्त पर बिजली गिरने से दरख्त में आग लग गई. निर्मल रूरल मंडल के कोटला गांव में बिजली गिरने से 6 मवेशी हलाक हो गए. इसी तरह आसिफाबाद जिले में गुज़श्ता एक हफ्ते से गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था. ऐसे में आज जिले भर में बारिश हुई. बारिश के नतीजे में केरामेरी मंडल के लकमापुर और अनारपल्ली में नाले उबल पड़े और तेज़ बहाव के साथ बहने लगे. नालों में तेज़ बहाव की वजह से मुतालिका देहातों को जाने वाले अफराद को उन्हें उबूर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा. दूसरी जानिब आज हुई बारिश से किसान खुश हैं और उनका कहना है कि बारिश कपास की फसल के लिए सूदमंद साबित होगी. नागर कर्नूल डीसीसी सदर और अचंपेट के रुकने असम्बली डॉक्टर सी वंशी कृष्णा ने कहा है कि रियासत में नामुकम्मिल प्रोजेक्ट्स के लिए बीआरएस जिम्मेदार है. नागर कर्नूल में वाकई एमएलए कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने कई प्रोजेक्ट्स को बरसों तक जेर इल्तवा रखा और अब अवामी हुकूमत पर तनकीद करना हैरत अंगेज है. उन्होंने कहा कि केटीआर की जानिब से किए गए तबसरे हकायक पर मबनी नहीं हैं. डॉक्टर वंशी कृष्णा ने मजीद कहा कि पालमूर और रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से मुतालिक हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर तफसीलात फराहम की जा रही हैं. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. रियासती वजीर पंगुलिटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि अराजी पर अवाम के हकूक को वाजे तौर पर दर्ज करना और इनके अराजी हकूक का तहफ़ रियासती हुकूमत का मकसद है. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी किस्म के खदशात की जरूरत नहीं है. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 2027 में होने वाली मर्दमशुमारी में ओबीसी के लिए खसूसी कालम शामिल करते हुए मुल्क भर में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करवाई जाए. रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि रियासत में अवामी हुकूमत तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर करवा रही है. और साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसान बर्फी और यूरिया के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. इसी के साथ खबरें खत्म हुईं.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं. नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है. विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है. इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है.
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की. राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे. 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन. जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे. 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा.

विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में

0: इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times stresses the urgent need for strong climate action to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. She called for stronger cooperation among stakeholders at the local, regional and global levels to address the challenges posed by climate change.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said farm ponds can help local communities in water-stressed regions. On the first day of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering. The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force are conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur to bolster defense collaboration. The fortnight exercise, which will conclude on Tuesday, involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI and Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. Japanese Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew a Tejas jet with a pilot, while Air Chief Marshal AP Singh flew solo on the Tejas jet as part of their sorties under the Indo-Japan bilateral air exercise. Talking to media in Jodhpur during an ongoing bilateral air exercise, Air Chief Marshal Singh said, Japanese fighter aircraft operating from Indian soil for the first time marks a major milestone in defense cooperation between India and Japan. Union Minister of State for Defense Sanjay Seth today witnessed an air show by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team at Meerut in Uttar Pradesh. The defense minister said the two-day air show began yesterday, drawing more than 1 lakh spectators, including students, NCC cadets and NSS volunteers. Speaking to media, Mr. Seth described the performance as a remarkable demonstration of discipline, precision, teamwork and professionalism, reflecting the capabilities of the Indian Air Force. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha

0: మీరింతవరకు సినీ గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 8:45 కావస్తోంది. మరికొద్దిసేపట్లో సమాచార సంధ్య ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాథ్ మై జయా భారతి. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया. भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी. वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि. वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया. यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया. मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे. एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया. और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते. महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची. वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं. नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है. विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है. इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है. बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं. वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं. इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है.
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी. वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी. राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे. 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन. 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा. वायुसेना

0: के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितम्बर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
4: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
5: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहां G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
1: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
0: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के

0: प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
1: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
2: घोर बेइज्जती
3: है? क्यों भाई, बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं है?
2: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया?
3: हाँ
2: भाई, तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
1: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
2: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
3: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
2: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने ले ली।
4: पर भाई, वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ,
5: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
1: अच्छा जोशी साहब,
2: हाँ,
1: हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे,
5: कमीज की कमीज वाले या हवारी तरह के?
2: ये देशमुख, पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा है।
1: अच्छा,
2: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
5: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
2: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
1: अच्छा,
2: हम भले और हमारा काम भला
1: हो,
2: पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा है।
5: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
2: हाँ हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
6: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी।
1: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
2: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
3: अजी साहब, अपने ऑफिस में चार पांच दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
2: कौन सी लड़की?
3: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
1: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में, ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
2: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
1: बता रहा हूँ जोशी साहब,
2: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
1: आप भी ना।
5: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ
1: है। चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है? जोशी साहब,
2: हाँ बोलो बोलो करने।
1: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना, मिस साने। हाँ मिस साने। अजी साहब, वो हाफ मैड है।
2: हाफ मैड?
1: हाँ हाँ हाफ मैड।
2: कैसे?
1: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने करने का? अजी साहब, बड़ी अजीब लड़की है।
3: अरे आखिर हुआ क्या?
1: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करने, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाएं। और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस आप ही कहिए।

0: साथ लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो, पगली।
1: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो कर्णिक,
2: हैं?
1: किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
0: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, हैं? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
2: अरे कर्णिक, वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
1: देख कर्णिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
0: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
1: तो दीजिए ना सबूत।
0: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
1: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? कर्णिक सही कह रहा है?
2: हाँ मांजरेकर, कर्णिक का कहना सही है, मिस साने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
3: क्या कह रहे हो, मिस साने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
0: अब मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
4: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्तों।
1: अरे जोशी जी,
4: अब मेरे पास आ गए।
1: हाँ, हाँ, हाँ, मैं चलता हूँ। अरे भाई अनारकर।
5: जी सर।
1: जरा इधर आओ।
5: जी सर।
1: ये लो ये फाइल, बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
5: जी अच्छा।
6: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
1: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
6: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
1: काम?
6: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहे, डेटा ही नहीं मिल रहे, आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
1: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
6: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
1: जी फाइल कहाँ है?
6: ये लीजिए।
1: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
6: कहाँ? ये?
1: हाँ हाँ हाँ ये और ये जो, हाँ नीचे, ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स।
6: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
1: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है, जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
6: थैंक यू।
1: नहीं नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
6: मिस्टर मांजरेकर, एक मिनट रुकिए।
1: जी
6: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
1: मेरे साथ? मगर मैं।
6: चलिए मिस्टर मांजरेकर आइए।
1: जी जी जी

0: वैसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रही हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: अरे कुछ नहीं, यही

0: अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है नमस्ते।
0: अब आप कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: बस गया रे। वो मुझे आज
0: क्यों, वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी, कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलाटली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई। अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
2: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी।
2: क्या हुआ?
1: दीदी अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
2: हाँ नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर, नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
2: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं, दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
2: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए, वगैरह वगैरह। क्यों रे कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
2: अच्छा अच्छा
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
2: ठीक है लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी, घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
2: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
2: बस रे, तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम, अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
2: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार रे, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन, अब तो शादी कर ले ठीक। कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
2: पगला कहीं का।
1: पगला?
2: अरे
1: कोई
2: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी ये क्या बोल रही हो तुम, सच बताऊं जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
2: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
2: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
2: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम तो मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे
2: ऐसा क्या तुझसे भी पूछा?
1: अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के करणिक और बापट से उसने पूछा।

0: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन है।
0: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, BABT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली,
0: हाँ,
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
0: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है, और हाँ खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहां भी मिस साने, मेरे यहां भी मिस साने, एक ही दिन में दो
0: सुन सचिन,
1: साने।
0: विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
1: लो अभी तो मैं दो दो साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूं, और तुम हो कि एक साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
0: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर, पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, विभावरी के घर हुआ।
1: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूं। क्या सोचेगी वो?
0: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूं।
1: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
0: इसीलिए तो कह रही हूं, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ, सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से, उसी को लाने के लिए मेरा दूत बनकर
1: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या
0: चले
1: बनाया आज खाने में?
0: जाना। तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।
1: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है, आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
1: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी?
2: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
1: वो घर पर है क्या?
2: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी।
1: ओ
2: लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
1: सुरेखा।
2: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
1: थैंक यू
2: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
1: जी।
2: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूं।
1: ओ
2: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर। आप भी नहीं खोलना?
1: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
2: लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं, दीदी कहती हूं।
1: अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
2: ये तो मुझे मालूम है,
1: अच्छा तुम्हें कैसे मालूम?
2: क्योंकि मैं होशियार हूं।
1: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा,

0: ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
1: बस अब वो आती ही होंगी। वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
0: हाँ, एकदम ठीक।
1: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया, आप
0: हाँ,
1: रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
0: मैं यही मुंबई में रहता हूँ। और काम काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊँ?
1: देखिए, दीदी कहती हैं किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
0: अच्छा, सुरेखा दीदी स्कूल गई है क्या?
1: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहां झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
0: सॉरी सॉरी, भूल गया था।
1: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
0: हाँ,
1: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा
0: कि
1: है।
0: बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
1: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
0: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
1: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
0: हाँ,
1: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांसरेकर।
0: मिस सानी,
2: आप यहाँ?
0: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
0: देखिए, सच कहूं, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम, अब आप, मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
1: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है, और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा, तुम अंदर जाओ। मिस्टर मानसिक, आइए, अंदर
0: थैंक
2: आइए, आइए बैठिए। आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया?
0: यू। स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
0: वो मेरी दीदी है।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
0: आपके बारे में
2: मेरे बारे में क्या?
0: सोच रहा था कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूं?
0: जी,
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे, और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
0: मैं समझ सकता हूं। मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
0: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस्सा ने,
2: जी
0: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
2: क्या कहती हूँ?
0: कहते हैं कि आप
2: पगली
0: जी,
2: है? ठीक ही तो कहते हैं।
0: यानी सचमुच आप,
2: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
0: मैं समझा नहीं।
2: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से

0: रहने में आसानी होती है। सोचो, अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
1: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
0: मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
1: मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
0: मेरे लिए
1: मिस्सा ने मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
0: और कहो ना, बोलो।
1: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी, एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी? मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर, अरे,
0: आप भी पागल हैं।
1: पागल?
0: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम
1: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
0: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
1: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
0: अभी
1: हाँ, अभी।
0: ठीक है, चलो।
1: लेकिन वहां हंसने का पागलपन मत करना।
0: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
1: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
2: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश कांबोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा मायणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: 20th of September, the Asian Games 2026.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नगोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
3: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
2: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल, सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
3: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, चेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो, लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
4: आईची नगोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
2: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
5: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्सा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा

0: ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गई। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
1: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।

0: आ रही हैं अमीषा।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
0: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांच जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10

0: से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कन्फर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
1: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेकबॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेकबॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेकबॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला और इस तरह से एशियन गेम्स में टेकबॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेकबॉल की पहचान जरूर बन गई।
1: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ 2-2 हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमिशा की रिपोर्ट।
0: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही हैं कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा, भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई, जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.0

0: 00 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा दहिया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपेक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉप टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सू महिला चेंग क्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेज सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रैजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्री हरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ 2-2 हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
2: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है, जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
1: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

0: చిత్రసీమలో మీరెంతవరకు సినీ గీతాలను ఆస్వాదించారు? ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 11 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో హిందీలో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है, इनकी यथासंभव रोकथाम और

0: ना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
0: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए